सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणी है। सतगुर की रीस होर कच्चू पिच्चू बोल दे से।

आए जदों आनंदपुर साहब दरबार विच नहीं गए, उत्थे आए जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा सोहना बाग सी, ते बाग दी सेवा कर रहा है भाई केसरा सिंह, आके चरणा विच बेनती कीती, भाई साहब कृपा करो सानू ऐसा मार्ग दसो कि साडे कोल एक सिख दी हत्या हो गई है, जो पानी मंगदा मंगदा चलिया गया, असी उहदे मूंह विच घुट पानी दा ना पाया, ते हुण असी ए अपने सिर ते पिया होया गुनाहा साडा कीता होया पाप किवें बख्शिया जावे, ते सानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन होण। भाई केसरा सिंह ने आख्या तुसी इसे बाग दी सेवा करो, समा आएगा तुहानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन भी होणगे। भाई केसरा सिंह रोज अमृत वेले आ फुलां दी सोहना एक सेरा बना के लै जांदा सी, ओ सेरा माता जीतो जी जदों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दरबार विच आउंदे सन तां उन्हां दे गल विच पाया करदे सन, ओ सेरा अज सोइना बोइना ने अपने आंसुआं दे नाल परोया तैयार कीता, आख्या भाई केसरा सिंह लै जा साडी बेनती, ते पातशाह नूं कहीं साडे वास्ते की हुक्म है। जदों भाई केसरा सिंह सेरा लै के आया, ऐसे प्यार नाल गुदिया होया सेरा जिसके एक एक फुल ते सोइना मोइना ने पता नहीं कितने कितने अथरू डेगे हैं। जदों माता जीतो जी नूं लिया दिता जो धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दे सुपत्नी सन, लो माता जी, माता जी कहण लगे भाई केसरा सिंह अज बड़े प्यार नाल सेरा गुदियाई, एडा सोहना सेरा, आख्या ये मैं नहीं गुदिया, ये कोई दो सोइना ते मोइना दनपति आए हैं, ये उन्हां गुदे, ताही ये धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आ गए। माता जीतो जी ने सेरा साहब जी दे गल विच जदों पाया, अंतर जामी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहण लगे भाई केसरा सिंह आ बेशक उन्हां नूं जाके कह दे सोइना मोइना नूं बाग दी सेवा जरूर करन, लेकिन जदों असी बाग विच आईए तां साडे मत्थे ना लगन। साध संगत बोलो श्री क्योंकि साढ़े सिख ने वचन किया है कि तुहानू ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। वापस आया भाई केसरा सिंह, मन बड़ा उदास है, सोइना मोइना समझ गए कि अजे हुक्म नहीं मिले, रोज नाम जपते हैं सेवा करते हैं, एक दिन रात का समय दोनों अपनी झुग्गी विच बैठे शब्द गा रहे हैं, मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ, ताई बुआ खड़किया, बुआ खोलिया की वेख्या माता जीतो जी खड़ोते, आख्या मेरे बच्चियो फिक्र ना करो, जिस प्यार नाल तुसी गुरु घर दी सेवा कर रहे हो नाम जप रहे हो एक दिन ओ जरूर आवेगा, मेरा मन कहिंदा है जदों तुहानू कलगीधर पातशाह दे दर्शन होणगे। साध संगत बोलो श्री पौ सतवीं दा दिन नेड़े नेड़े आ रहा है, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा अवतार पुरब, सोइना मोइना ने सोहने फुल तैयार किए कि जाके साहब जी दे चरणा विच भेटा करके गुलदस्ता बना के सोना भेजांगे। एक दिन विच रह गई, अगले दिन पो सतवीं दा दिन सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे आगमन दा, प्रकाश उत्सव दा, ताई रात एक रोड़ा जलाली करके फकीर आया, उसने सारी क्यारियां विचों फुल तोड़ के ले जाण लगा, सोइना मोइना ने जदों ए वेख्या ते चरण पकड़ ले, आख्या ए फुल तेरे वास्ते ने, ए फुल असी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वास्ते सजा के रखे, तां ओ कहण लगा जे मैनू फुल ना दोगे तां मैं तुहानू श्राप दे के जावांगा। कंब गए, गश खा के दोनों डिग पए, सर्दियां दी रुत है, दोनों दी लोथां बाग विच पईयां। जदों सवेरे रोड़ा जलाली फकीर फुलां लै के गुलदस्ता बना के धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे चरणा विच पहुंचिया, अज पौ सतवीं दा दिन है, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा जन्म दिन,
सारे पेटावां लिया रहे। जदों रोड़ा जलाली ने फुल रखे अगे तां धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह त्रबक के उठ पए। आख्या ओ रोड़ा जलाली, तू रोड़ा जलाली नहीं, तू रोड़ा पलाली है। तू ए फुल नहीं तोड़ के लियाया बाग विचों, गुरु नानक दे चरणों विचों दो रूहां नूं तोड़ के लियाया। साहब जी उठे आए उस थां ते जिथे सोयना ते मोयना बेसुरत होके पैन दोनों दी लोथां पईआं। साहब जी दे नाल सारियां संगतां बाग विच आ गईआं। साहब जी उत्थे ही धरती ते बह गए, एक गोडे ते सोना सोयनिआं दा सिर रखिआ, एक गोडे ते मोयना दा। भाई दया सिंह जी पातशाह जल लियाओ, जल दे छट्टे दिते। दोनों ने नेत्र खोले, की वेखिआ, साडा सिर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी गोद विच है। सात संगत बोलो श्री आख्या सुपना है के सच। साहब जी कहन लगे सच है, अज तुहाडे प्यार दे सदके मेरे सिख ने भी तुहानू बख्शिया और मैं भी तुहानू बख्शिया। आओ अज असी अपना ए पोह सतवीं दा पुरब तुहाडी झुग्गी विच ही मनावांगे। झुग्गी विच लै गए, साहब जी बह गए, सारियां संगतां उत्थे ही आ गईयां। साहब जी ने आख्या ओ एडे प्यार नाल सानू याद करदे सो, शब्द सुणांदे सो, हुण असी आए हां, हुण भी तां सुणाओ। दोनों ने फिर ओ शब्द गाव्या। अज मन दियां लोचावां पूरन हो गईयां क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे प्रतख दर्शन हो रहे। सात सगत बोलो श्री आ। एडा प्यार किते साडे मन विच भी आ जावे, साडा भी मन और रसना एक हो के ए अखर आखे, तां फिर गुरु दूर नहीं है। बुलिया साई ते तो वख ना, फर्क भी विचों कख ना, पर वेखण वाली अख ना। आओ करिए बेनती, मन हिरदा और रसना एक होके ए पुकारे की। आओ प्यार।

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद्दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरी सिंह नलुए दी चढ़त, पठाड़ा नू अपनी मौत दिसन लगी।
1: कई हजार मुल्किया कठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाना नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपां दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पाड़ पै गया।
1: हुण महासिंह अग्गे 3 काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पाड़ पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोकदिया रोकदिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी, रातो रात पेंडा मुका, पिशौर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पहुंचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है, मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

नगाड़े ते चोट लगी, खंडे तलवारा ते बर्छे लिशके, केसरी निशान चूले, कोड़िया दे पौड़ा नाल, पहाड़ियां गूंज उठिया। 10,000 सिंघा ने जमरौद वालू कूच कर दिता। सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: अप्रैल 1837 का सूरज चढ़द्या ही सरदार हरि सिंह नलुए ने सिख फौजा समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई, सरदार हरि सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एउं टकरे।

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुटके बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वद्दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आख्या,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछो घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वाल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

देने, पता नहीं से कि इस तरह परमेश्वर दा सदा आ जाएगा। साहब जी कहते ने इंसान हर काम महूरत देख के करता है। घर बनाना होवे, घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे, जां कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी दा काम होवे, ता इंसान सारियां तो पहला दिन देखदा है, तारीख देखदा है, महीना देखदा है, साल देखदा है, मुहूर्त देखदा है। एक काम इस महीने इस तारीख नू करना है, इस वेले करना है, ताकि सारियां नू बुला लवां, किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहिब जी कहंदे ने ऐ इंसान तू हर काम महूरत ते कीता, दिन देख के कीता, साल देख के कीता, पर मरन लगिया तू कोई महूरत ना देखिया, कोई तारीख ना देखी, ए ना सोचिया इस दिन इस तारीख नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा, सारिया नू दस दिया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहते ने ऐ इंसान हर काम तू मुहूर्त दे कर सकदा है, पर जड़ी मौत है ये मुहूर्त नहीं देखन देंदी। मरण ना मुहूर्त पुछया, पुछी थित ना वार, मौत ने ना दिन देखन देता, ना तरीक देखन देती, ना कोई महीना देखन देता। बस इन्ना ही पता लगा, चंगा पाला सारे परिवार नू मिलके घरों तो रहा कि मैं चलदा आ जावांगा वापस, घरों ते तुर पिया, परिवार नू मिलके बड़ा खुश है। पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाना है। घर वाले कारू डीकते पए ने, आ जाणगे शाम नू, मेल हो जाएगा, पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना, पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे हैं, हुक्म आ गया परमेश्वर दा, आया हुक्म पार ब्रह्म का, उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया। जांदियां जांदियां रस्ते विच हुक्म आया, मौत हो गई। साहिब जी कहंदे ने बड़ा कुछ बनाया, हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया। एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पिया, ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा, कि आखरी वेले किसे नू मिल ही लवां, नहीं। परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ़ा है, जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नू मिलण दा समा नहीं मिलदा। हुक्म बड़ा डाढ़ा है, आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े। हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तो अपने प्यारियां नू रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

अराज मिल जोबन ग्रैसोबा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड़ गया राजभाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार सोबा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चा नाल बनाई

जदू किसी का कोई प्यारा मर जावे असी कह देने सबर करो जो होना सी हो गया हुक्म सी परमेश्वर दा परसा संगत हुक्म मनना कोई सौखा नहीं ये भी सच है एक दिन मरना है पर ये भी तां सच है कि विछोड़ा सहना बड़ा औखा है इस दुख दा उन्हूं पता है जिदा कोई मरे क्योंकि गुरु साहिबां ने इस दर्द नूं समझिया अगर किसी औरत दा पति मर जाए मां दा पुत मर जाए उस दुख नूं गुरबाणी विच साहिब जी बयान करदे ने ओ मां जिदा पुत्र जिन्होंने बड़े चा नाल पालिया कहिंदे ने हर मां बाप की इच्छा होंदी साडा पुत्र वड्डा होवे जदों असी मरीए ये सानू मोढ़ा देवे पर ऐसे मां बाप नूं जदों ये पता लगे कि साडा पुत्र मर गया ते उन्हां दा दुख की हो सकता है कबीर साहब जी बयान करदे ने देहुरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई वेड़े विच बैठी मां रोंदी पई है जिस पुत्र नु पालिया जानदा तां मेरा समां सी उस पुत्र नु मरिया देखिया जिन्नू चार भरा आए चुक के लै तुरे एक पासे मां रो रही है दूसरे पासे लट छिटकाए तिरिया रोवे तिरिया औरत नूं के एक पासे वाल खलार के औरत पई रोंदी है जिदे सिर दा साईं चला गया ओदे दुख नूं कौन समझ सकदा है साहिब जी धन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने औरत भी पति नाल ही सौंदी है जद तक पति जिउंदा है आदर सारे दिंदे ने पति ना रवे ते दुनिया विच जीवन जीवना बड़ा औखा हो जांदा है साहिब जी

बंके कहंदे ने पती नूं जिन्हां दे पती मर गए जिन्हां वापस नहीं आना उन्हां औरतां दे बारे साहब जी कहंदे ने तैनूं क्यों रहण विहाणी उन्हां दीआं रातां हुण किवें बीतन।

कदी हसो ना, क्यों? मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि ओदा हुक्म बड़ा डर। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझिया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा जीवन भी कुछ नहीं।

इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसी का भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहते ने यह भी सच है मरना जरूर है यह भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इस वास्ते ये बाणी दिती है कि परमेश्वर का सिमरन करो दुनिया नू नाशवान समझो ताकि इस दुख नू तुसी सह सको ये समझ सको ये हुक्म सी जिड़ा आया है उन्हें जाना जरूर है एक दिन असी भी जा

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान यह चाहता है कि मैं किसी ना किसी ते हुक्म चलावां, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइयां जितता है, तरक्कियां करता है, बड़ा कुछ बना भी लैंदा है, यह भी कहता है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव पबाड़े। मुख कहंदे ने मोन, मोह तू यह भी कहंदा है मैं जिन्हों चाहवां उन्हों मार सकदा, जिन्हों चाहवां उन्हों छड़ सकदा। पर साहब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है,

साढ़ा भी हुण आखरी समा आ गया है, ज्योति ज्योत समाण दा समा। पर साड़ी इच्छा है गोविंदवाल साहब जाके असी अपना शरीर त्यागीए। ये सुनदे सार सारियां संगतां वैराग च आ गई हैं कि प्यारे गुरु ज्योति ज्योत समा जाणगे, असी किस तरह जीवांगे। सारी संगत परिवार इकट्ठे हो गए। गुरु रामदास अमृत वेले संगतां दे नाल अपने परिवार दे नाल अमृतसर साहब तो चले गोविंदवाल साहब पहुंचे। शाम नूं जदों पहुंचे हुक्म कीता जाओ भाई इशनान करो आराम करो, असां सवेरे शरीर त्यागना है। पर किन्नू आराम चंगा लगता है, किन्नू नींदर आंदी है। आज दी रात बीत गई, अमृत वेला होया, सतगुरां इशनान कीता है, अपने आसन ते बैठ गए ने। चार सवेरे संगत बैठी है, हाथ जोड़ के अखां विच अथरू ने। गुरु रामदास जी दे सुपत्नी माता पानी हाथ जोड़ के कहन लगी, मैनू भी नाल लै चलो, तुहाडे पिछे रह के हुण मैं की करना है। गुरु रामदास जी कहन लगे, भाई जीवन ते मौत परमेश्वर दे हाथ है। जीवन ओ देंदा है, जीवन लैंदा भी ओ है। इस शरीर नूं गवाण दा किसे नूं कोई हुक्म नहीं, ओदा हक नहीं बनदा। समा साडा आया है, असां ज्योति ज्योत समाणा है, पर तुसां हाले बड़े काम करने। फिर प्यार भरी इक निगाह अपने सुपुत्र गुरु अर्जन साहब वल देखिया, एक निगाह सारी संगत वल देखिया, फिर अखां बंद कर लईयां। देखण वालिया नूं इस तरह जापदा है, हुणे अखां खुलणगियां, हुणे कुछ कहणगे, हुणे बुल हिलणगे, कोई अमृत बचन सुनाणगे। पर समा ओ आ गया ज्यों जल में जल आए कटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। धन गुरु रामदास ज्योति ज्योत समा गए ने, और उपदेश कर गए किसी ने रोना नहीं, क्योंकि रोण दा लाभ कोई नहीं। मत मैं पिछे कोई रोग सी, सो मैं मूल ना पाया। रोना नहीं, परमेश्वर दा कीर्तन करना है, सिमरन करना है, ताकि सिमरन सदका विछड़ी रूह नूं परमेश्वर अल्लाह दे चरणां विच जगह मिले। ए उपदेश कर गए ने, भाई अगर कोई विछड़ जाए दुनिया ना त्यागना, वैराग विच पै के अपना शरीर ना गवा लेना, दुनिया विच रहना, दुनिया नूं नाशवान समझना है। दुनिया दे काम भी सारे करने ने, पर नाशवान समझ के किसे दा बुरा नहीं करना, किस ना ठगी नहीं करनी। जीवन उच्चा ते सुच्चा बताना है। गुरु साहिब जी कहंदे ने, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने। उपदेश करे आप ना कमावे, तत शब्द ना पछाने। नांगा आया नांगो जासी, ज्यों हस्ती खाक शाने। संत सज्जन सुनो सब मीता, झूठा ए पसारा। मेरी मेरी कर कर डूबे, खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। एक नाम ने निस्तारा करना है। अज दा ये कीर्तन आपां सुन के अपने मना विच धारीए, एक दिन मरना है, ताकि जीवन सफला करके जाइए।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांकेर दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां भई मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले।

पता नहीं किन्ना कु सियाण है, किन्ना कु सुगड़ है, कोई हिसाब ला सकता है, क्योंकि उसकी किरत का हिसाब नहीं लाया जाता। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन समार, तेरी दिती हुई दात की समझ नहीं आती, तेरी समझ कितों आ, तेरी दात का ही मुल नहीं पाया जाता, तेरा कौन मुल पावे, तेरी दात ही एडी सोहनी एडी खूबसूरत एडी जुगत ला ली है, ते तू किन्ना सियाना होएगा। साहब कहते ने मत समझी ओ सियाना कोई होर भी है जिसने तेनू शरीर दिता, जिसने शरीर च मन पाया, जिसने तेनू वर्तन वास्ते धन दिता है, जिस दिया सारिया बख्शिशा भोगदा है ओदे नालों सियाणा होर तेनू कोई मिलेगा नहीं। ते कई बार तो इन्ना भी भुलेखा लग जाता है, तू ऐसा समझ लग पैना उन्हें कोई गलती की है, मैं ठीक कर दिया, जो उन्हें बनाया शायद गलत बनाया मैं उन्हें ठीक कर देवा, जो उन्हें रचिया शायद गलत रचिया है मैं सुधार कर देवा, अपने आप में सियाणा समझ बैठा होवांगा। कोई सूरत नहीं, कोई तरीका नहीं कि तू अपने आप में सियाणा समझ सके। जिसने तन मन धन जिन प्रभ दिया, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खान, एक शब्द च महाराज सच्चे पातशाह ने सानू चेता कराया, चेता ही कराने वाली गल है, पता सारा है भुल जाने साहबा ने पावन बाणी च सानू उन्हां चीजां की सारी निष्ठता नहीं आती, लेकिन मोटियां मोटियां जिन्हां बिना बंदे का नहीं सरदा उन्हां दा जिक्र महाराज ने किया, तो कहते ने तेनू ओदा चेता है, तेनू ओदा ख्याल है, जिसने तेनू इन्ना कुछ दिता है

कथाओं नहीं तुझे है बदो पुरख बिधाते आंखों सुहे जिठे सबे थाओ नहीं तुझे है बदो पुरख बिधाते आंखों सुहे वसती सगन अपार अनूप रामदासपुर वसती सगन अपार अनूप रामदासपुर हरिहर नानक कसम

अकाल मूरत अजूनी सहभंग और प्रसाद जब आप सच युगा सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के नर्वर्ण जात हर पात नहीं जैन रूप रंग हरी पी भूकर सत्य है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित तूज कह जय इंद्र इंद्रान शाहो शाहान गणेश फिर भ्रमण में ही सुर नारासुर नीत नीत मंडन कह सब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सतपुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर पर तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो बारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सबना भी आवारी नानक दास संत पाछा परियू राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरी है सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग माणिया सतगुर हुई दयाल ता जम का डर के हा सतगुर हुई दयाल ता सद ही सुख दयाल सतगुर हुई दयाल ता नवनिध पाइया सतगुर हुई दयाल।

प्रभु पूरन पैज सवारे। जेड़ा मनुख पूरे गुरु दी शरण पैंदा है, ओट लैंदा है, आसरा लैंदा है, साईं फरमाउंदे ने यकीन जानो कि परमात्मा ने उस दे सारे काम सवार दिते। प्रभु ने उस मनुख उत्ते मेहर दी निगाह कीती ते लोक परलोक विच उस दी लाज चंगी तरह रख ली। शब्द विच साहिबां दा

तू मेरा वड्डा मालिक है, तू पारो स्वामी मोरा, ए पुन पदार्थ तोरा। तू मेरा वड्डा मालिक है, तेरा नाम पदार्थ जो मैनू गुरु दी राही मिलिया है, ए तेरी ही बख्शिश है। जन नानक एक ते आया, सर्ब फला पुन पाया। जिस मनुख ने गुरु दी शरण पै के परमात्मा दा सिमरना शुरू कर दिता, उसने सारे फल देन वाली रबी

हे शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

चंद्रमा की शीतलता, चंदन की शीतलता, यह शीतलता सिर्फ शरीर नूं ही कुछ शांति या ठंडक पहुंचा सकती है, मन नूं आत्मा नूं ठंडक नहीं पहुंचा सकती। चंदन मस्तक ते लाउंदे ने इसे वास्ते कि मस्तक विच दिमाग हुंदा है और दिमाग विच अनेकां फतूर हुंदे ने। दिमाग विच फतूर होवे, दिमाग विच क्रोध उत्पन्न हो जाए, सारा शरीर क्रोधा अग्नि दे विच थर थर कंबण लगदा है। मस्तक ते चंदन लाउण दा प्रतीक है शांति दा प्रदायक। लेकिन जे मन विच अग्नि होवे, क्रोध दी अग्नि, ते मस्तक ते चंदन लाया है, मन दी अग्न नहीं बुझेगी। ओ ते तां बुझेगी जे इसनू हरी नाम दा रंग चढ़ावेगा, परमेश्वर दे नाम दी इसनू शांति मिलेगी, ओदा चिंतन करके इस मन नू शीतलता प्राप्त होवेगी। जरा ध्यान देना, जालम ने एक ऐसा कांड रचया जो इतिहास विच इस तो पहला किधरे दृष्टि नहीं आउंदा। इस कलयुग दी ते क्या गल है, पिछले जड़े बीते हुए समय ने, युग ने, उन्हां विच भी ऐसी घटना किधरे सुनने विच नहीं आउंदी, पढ़ने विच नहीं आउंदी। पट्ठी तैयार कीती गई है, उत्ते लोह रखी है, हुक्म दिता जालम ने एदे हेठां अग बालो, लकड़ां लिया कि अग बाली गई। उत्तों जेठ दी तपदी होई ए गर्मी दी रुत, ऐसे हाल विच आखे आ गया गुरु अर्जन पातशाह जी नूं, आप इस तवी दे उत्ते बैठो, असां वेखना है कि तुहाडे अंदर कितनी क शीतलता है। तुसी जो कहंदे हो कि मैनू कोई तपा नहीं सकदा, कोई जला नहीं सकदा, असां वेखना है शीतलता कितनी है तुहाडे अंदर। धन गुरु अर्जन देव पातशाह मुस्कराए, सतनाम श्री वाहिगुरु बोल के आप तवी दे उत्ते चौंकड़ा ला लिया, चौंकड़ा ला लिया इस तवी दे उत्ते, और कह

अंदर क्रोध दी अगन पड़क रही है। इना दे अंदर नफरत द्वेष भावना दी अगन पड़क रही है, जो इना नू मजबूर कर दी है कि ए जुलम करन। ए सोच रहे ने कि मैं भी इस तपस दा प्रभावित हो जावा, इस नाल मैनू भी कुछ प्रभाव पवे। पर मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक नाम दा, जो सारिया शीतलतावां दा एक सोमा है, वो ऐसा अमृत नाम बख्शिश कीता है कि ए तपदे होए कड़ाहे, तपदे होए हिरदे उस नाम दी शीतलता नू प्राप्त करके शांत हो जांदे। पर ए शीतलता, नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे भाग चंगे होवन, जिन्हां दे श्रेष्ठ उत्तम भाग होवन। ते हरी नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है, वरना मनुख जबान तो ते जब जरूर जपदा है उस परमेश्वर दा नाम, पर जे अंदर क्रोध दी अग्नि होवे ओ जपे दा कोई फायदा नहीं। जे अंदर लोभ दी लालसा होवे, जे अंदर नफरत होवे, द्वेष भावना होवे, उस रसना तो जपे दा कोई फायदा नहीं। तो हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे संसार नू एक शांति दा उपदेश दिता है। ए क्रोध दी अग्नि बुझ सकती है जे नाम दा शीतल अमृत ओ सरोवर ओ सोमा

पूरे गुरु दा मिलाप होया, उदी बख्शिश होई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उना दा सहम मैनू हुण सता नहीं रहा, ओ भज गए ने मेरे कोलों।

करके मेरे मालिक मैं तेरे नाल जुड़ जा, तेरी गलवकड़ी विच आ जा, तेरे विच समा जावा, मन करके तन करके अधूरा नहीं, केवल तन करके जुड़िया होवा, मन ना जुड़िया होवे ऐसा भी नहीं। ते जे मैं ऐसे बहाने करा कि मेरा तो मन जुड़िया है, तन की केड़ी लोड़ है, प्यार तो इस तरह कोई नहीं होता। जिन्होंने प्यार किया है महाराज उन्हों की गल करते, गुरसिखा की गल करते हैं, भगतों की गल करते हैं, संतों की गल करते हैं जिन्होंने प्यार किया, प्यार किया तो फिर भरपूर किया। प्यार च अधूरेपन की गल हो, जब भरपूर प्यार करना है तो फिर तनो मनो प्यार करना है। तुसा वेखिया है सुहागना पति नाल मिठा बोलदियां ने, पति की प्रसन्नता वास्ते तरह

एक ऐसा भी हो सकता है जिहड़ा गुरुद्वारे आके बैठ गए, मन इत्थे नहीं पिया जुड़दा, मन किते संतान ते रह गया है, मन किते मकान ते रह गया है, मन किते दुकान ते रह गया है, मन किते भटकदा रह गया है, शरीर करके इत्थे बैठा रह गया है, अधूरी हाजरी लगेगी। और वह बड़ी खास कथा है जिहड़ी साहिब कलगीधर पातशाह दे द्वारपाल दो गुरसिखां विचों इक चला गया सी रात नूं, रासधारियां दी रास वेखण चला गया सी।

महाराज ने पूछिया क्यों भाई रात पहरे से हाजिर रहे सो? बोल पिया कहन लगा महाराज मैं गैर हाजिर हो गया सा। किथे गया सा? कहंदा जी रास वेखण चला गया सा। अनाल दे पिंड रास धारिए बड़े गुणी आए सन, बड़ा चिर हो गया सी जद तो तुहाडे चरणा विच आया, इस पासे कदे गए नहीं सन। चला गया सा, गलती हो गई। साहब कहन लगे चंगा कीता, जे गया है चंगा कीता है। तू दस की वेखिया ते की सुनिया? कहन लगा महाराज चंगा कोई नहीं कीता, मैं बहुत माड़ा कीता। एक तां गैर हाजरी कीती, सेवा तो गैर हाजरी की। एक मैं गलत पासे गया, चंगा तो मैं कोई नहीं कीता। महाराज कहन लगे चंगा फिर दस वेखिया की ते सुनिया की? सिर नीवा करके खलो रहा, खिमा मंगी। महाराज ने फिर पूछिया वेखिया की ते सुनिया की? कहंदा महाराज ना कुछ वेखिया ते ना सुनिया। क्यों भाई ऐसा किवें हो गया? कहन लगा महाराज गया तां बड़ा ढाह के सा, ते भीड़ नूं चीरदा सिरे ते जा पहुंचिया, पर उत्थे कुछ कहानी होर तरह हो गई। लोग रास धारियां नूं छड्ड के मेरे वल वेखण लग पए, और कुछ लोग गल्लां भी करन लग पए, गुरु का सिख इत्थे किधर फिरदा है? वेस तो गुरु का सिख जापदा है, इहदी दोहरी दस्तार, इहदी श्री साहब, इहदे रहणी बहणी दे सारे लक्षण पूर्ण गुरसिखां वाले ने। इत्थे की करना है? ते जे इत्थे आया रात इत्थे जागदा रहा, अमृत वेले किवें जागेगा? जे अमृत वेले ना जागिया तो नितनेम किवें करेगा? नितनेम ना करेगा तो फिर सिख किवें होया? फिर तो कोई बरूपिया ही होना। जिवें असी रास धारीए, तरह तरह के रूप धारण करके ते लोगों का जीव परचावा पै करने आ, किते वी तां नहीं सिख का रूप धारण करके अपना या लोगों का जीव परचावा करदा फिरदा हो? कहिंदा महाराज उन्होंने गल्लां कीतियां ते मेरे कोल खलोना औखा हो गया। मैं पिछा नूं निकलना चाहिया पर निकलण नहीं दिता उन्होंने। मैं उत्थे ही सिर गोडिया च दे के बैठ गया। महाराज ना मैं कुछ सुनिया ते ना कुछ वेखिया है, तुहाडे चरणा दा ध्यान करके पछताउंदा रहा। साहब कहन लगे तू फिर कादा गैर हाजर होया? तेरा मन तां इत्थे रहा ना। दूजे नूं कहन लगे तू तां हाजर रहा कि महाराज मैं तां किधरे कदम नहीं हिलिया। साहब कहन लगे कदम तां तेरे शरीर दे नहीं हिले, मन करके भी हाजर रहा। गड़बड़ा गया, कहन लगा महाराज मन तां मेरा इहदे मगर तुर गया सी, मन तां मेरा रास धारियां वाले टिकाणे ते पहुंच गया सी। उन्हां दीआं आवाज़ां मेरे कन्नां च आउंदीआं रहीआं ते मैं रचना रच के इस तरह नचदे होणगे, इस तरह फेरे लैंदे रहे होणगे। मैं उह तमाशा अखां दे सामने बना के वेखदा रहा। साहिब कहण लगे इह बंदा हाज़र सी शरीर करके, लेकिन मन करके गैर हाज़र सी। बड़ा पछतावा लगा, इहदे नाल तां जाण वाला ही चंगा रहा। महाराज कहण लगे नहीं, तुसां दोवां चंगा नहीं कीता। जिहड़ा मेरे सरूप नूं गलत जगह ते लै गिआ है, इहने वी मेरे नाल धरोह कमाया। मन करके हाजिर रहा है, लेकिन शरीर मेरा सरूप तां उत्थे लै गिआ है। ते जिहड़ा शरीर करके इत्थे रहा है, मन करके उत्थे फिरदा रहा है, मैनूं इह अधूरे प्रेमी दोवें ही प्रवान ने। मैनूं इह अधूरी प्रीत, अधूरी सेवा, अधूरी हाजरी दोवां दी प्रवान नहीं। एक शरीर करके गैर हाजिर फिरदा, एक मन करके गैर हाजिर फिरदा। मैनूं तां दोवां तरहां नाल हाजिर चाहीदे। और कई ऐसा करदे ने, इथों तक मैनूं खिमा करना। एक बार ऐसा भी होया, किसी प्रेमी नूं क्या गुरमुखा केसां दी बेअदबी ना करिया कर। कहिंदा जी प्यार तां अंदरों चाहीदा, केसां नाल की हुंदा? कमाल है, जे तेरे अंदर प्यार हुंदा ते जिस दे केस ने, जे कलगीधर दे चरणां नाल तेरा प्यार है, ते उहदी मोहर दा तूं एवें बेड़ा गर्क करदा, एवें ही उहदी मोहर नूं कैंची धरदा? नहीं हो सकदा सी। तैनूं गुरु नाल प्यार कोई नहीं होणा, अंदर भी कोई नहीं होणा, अंदर दा बहाना ना कर। उन्हें एक बड़ी अजीब गल कही, कहन लगा जी आ जिन्ने फिरदे ने दाड़ियां वाले केसां वाले, मैं एक गल पुछना। मैं क्या दसो कि पांच ककार ने? मैं क्या बिल्कुल ठीक है। कहिंदा केस कंघा कड़ा कशहरा ते कृपाण। मैं क्या बिल्कुल ठीक है। कहिंदा विखाओ मैनू किन्या ने बाकी दे चार रखे हुए? 20% मैं उन्होंने फालतू हाँ, और कोई खास गल नहीं। वो जिन्होंने केस रखे

भगत नू गुरु प्यार वाले नू बिना गुरु के दर्शन ते गुरु के दर्शन दे भी दो अर्थ ने एक ता दीदार जिहड़ियां अखां नाल करने आपां एक दर्शन संस्कृत च फलसफे नू कहिंदे जो गुरु की फलासफी है जे उहनू नहीं समझिया ते दर्शन सदा अधूरे रह जाणगे। सतगुर नू सब को देखदा जेता जगत संसार डिठे मुक्त ना होवे चिचर गुर शब्द ना करे पिया गुर शब्द ना करे विचार जिन्ना चिर गुरु के शब्द दी विचार गुरु के बचना दा अध्ययन गुरु के बचना दी कमाई ना कीती उन्ना चिर केवल आए मथा टेक के तुर गए ता प्यार बड़ा अधूरा है। इस तरह वेखिया गल नहीं बननी अखा नाल गुरु के सोहने दर्शन दिदारे ते मन नाल गुरु के दर्शन भाव गुरु के फलासफी दी विचार गुरमत दी विचार चले मन तन करके इत्थे महाराज कहंदे ने नहीं रह सकदा गुरु का सिख गुरु के दोहां दर्शना बिना फलासफी बिना ते देखे बिना गुरु नूं कोई नहीं इहदा गुजारा हुंदा। दासां ने पावे बिन दरसावे एक खिण धीरज क्यों करे नाम बिहूणा तन मन हीना जल बिन मछली ज्यों मरे। बंदा तड़फदा फिरदा रह जांदा गुरु तो टुटिया ईश्वर तो टुटिया होया नाम तो टुटिया होया बंदा मन करके तन करके बेचैनी विच रहिंदा जिवें मच्छी पानी चो बाहर कढ के सुट देईए उहनूं कहीए तां केवल शरीर करके तड़फ रही है मन तां इहदा सुखी है कोई नहीं मन सुखी रहिंदा उह जिहड़ी शरीर करके तड़फ रही है अंदरों भी दुखी ते जिहड़ा बंदा अंदरों दुखी है उह शरीर करके भी तकरीबन दुखी हुंदा है। तुसां देखिया बंदे नूं गुस्सा आ जावे कहिंदा मेरा तां तन मन पिया सड़दा कहिंदा और उंज भी चेहरा भी लाल सूहा हो जाएगा हाथ पैर कंबन लग पैणगे हुण गुस्सा तां मन नूं आया तेरे शरीर नूं की होगी। और एक दिन ऐसा भी आवेगा डॉक्टर कहणगे गुस्सा ना करिया कर तेरा खाना तेनूं कोई नहीं भ्यासम हुंदा तेरा मेदा काम नहीं कहिंदा क्यों मेदा तां शरीर है मेदा तां शरीर दा केंद्र है गुस्से दा दिमाग च गुस्से दा मेदे नाल की तलक है बहुत वड्डा तलक क्रोध करन वाला चिंता करन वाला अज नहीं ते कल नूं बहुत वड्डा बीमार हो जाएगा। शरीर ते मन दा बड़ा संबंध है प्यार मन ते तन दोहां तरीकियां दे नाल पुगदा है एक तरीके नाल कोई नहीं पुगदा। महाराज कहिंदे ने जिहड़े टुट गए ने प्यार तो उन्हां दा मन ते तन दोवें ही कमजोर बेचैन दुखी रहिंदे ने नाम बिहूना तन मन हीना जल बिन मछली ज्यों मरे ते कहिंदे ने मैनूं इहो जी मौत इहो जिहा तड़फना इहो जी

वै मन इच्छे नानक फल पावे। सतगुरु जी का उपदेश सिख नू समझांदा रहिंदा है कि सदा प्रभु दी शरण विच रहो, क्योंकि प्रभु दी शरण तो बिना होर किसे दी भी शरण बिरथी है। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एकै भगवान, जिसके दिए रह अघाए, बहुड़ न तृष्णा लागे आए। सदा ते संग चलन वाला साथी सिर्फ प्रभु दा नाम ही है। साहिब बाणी द्वारा गुरु तेग बहादुर पातशाह समझांदे हन, हर जस रे मना गाए लै जो संगी है तेरो। गुरुदेव कहंदे हन कि समा बीतदा जा रहा है, मेरा कहा मन ते हरी जस करके अपना जीवन सफला कर ले। अवसर बीतो जात है, कहो मान लै मेरे।

पादशाह तो सवाल कीते, पादशाह तुसी अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज क्यों नहीं कीती? कहन लगे फर्क है, उत्थे रब दी कथा है, इत्थे मैं अपनी कथा कह बैठा, इसलिए अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं कीती। पातशाह तुहानू की लोड़ पै गई अपनी कथा सुनाण दी? कहन लगे लोड़ सी, जिस वेले तुलसीदास किसे प्यार विच आया, श्री राम नू भगवान राम कह बैठा, सूरदास बहुत ही सत्कार विच आ गया, कृष्ण नू भगवान बना बैठा, कोई ऐसा सिख उठ के मैनू भगवान ना कह बैठे, वाहगुरु ना कह बैठे, इसलिए मैनू अपनी कथा कहनी पै रही। पर जे पातशाह तुहाडे गुणा नू ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਭਈ ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ, ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ

अच्छा कहन वाले कह छट देने। भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतारा उन्दे बड़ा खंडन कर दिते कि उन्होंने दिल विच कोई भेद सी फर्क सी। अच्छा कहन लगे नहीं मेरा किसे नाल वैर नहीं, मैनू जिवें वाहगुरु ने गल्लां आखियां ओ मैं संसार नूं दस रहा। दूजी गल उन्हां तों विछोड़ के जे मैं आखा मेरे पैरां दी पूजा करो तां ते मैं भुल विच हां। मैं कहिंदा भई नहीं ओह भी दस रहे ने मैं भी दस रहा, उस वाहगुरु दे तुसी भी सेवक बनो, इसलिए मेरा किसे नाल वैर नहीं। हजूर कहिंदे ने